0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-3400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587 360

0: क्रूज से कमर्शियल शिप्स सुरक्षित ढंग से गुजर सकें इसके लिए एक कम्युनिकेशन लाइन बनाई जाएगी और मीडिएटर्स की कोशिश होगी कि लेबनान में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए। अब दोनों देशों में जो सहमति बनी है वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला और इसराइली सेना के बीच संघर्ष तेज होने के बावजूद हुई है। इसराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना तब तक दक्षिण लेबनान में बनी रहेगी जब तक हिजबुल्ला से उत्तरी इसराइल को सुरक्षित नहीं बना दिया जाता, जबकि ईरान की साफ शर्त है कि कोई भी समझौता तभी मंजूर होगा जब लेबनान में संघर्ष रुकेगा। तो कल जब जंग के बाद दोनों पक्षों के नेता एक जगह जुटे तब कैसा माहौल था, देखिए बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की इस रिपोर्ट में।
1: हाथ मिलाए गए लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी और कतरी मीडिएटर्स के बीच, लेकिन ये बात अहम है कि अमेरिका और ईरान की हाई लेवल डेलीगेशंस एक ही कमरे में मौजूद रहे जहां वो उस डील पर बातचीत करने की तैयारी करते दिखे जिस पर उनकी राय भले ही अलग थी।
2: राष्ट्रपति ने कहा है कि वो पूरे इलाके में सीज फायर सुनिश्चित करेंगे। कतर, पाकिस्तान और इसराइल में मौजूद हमारे दोस्तों के साथ काम करते हुए हमें बेहतरीन दोस्त मिले। हम सभी क्षेत्रीय शांति के लिए काम कर रहे हैं।
1: ईरान लगातार ये बोलता रहा है कि जब तक सीज फायर लेबनान पर भी पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता तब तक किसी और समस्या को हल करने पर बात नहीं हो पाएगी।
3: इन बातचीत में सबसे अहम मुद्दा लेबनान में सीज फायर को लेकर होगा। अगर लेबनान में जंग नहीं रुकती है तो इसका सीधा असर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर पड़ेगा।
1: इनका कहना है कि दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर हो रही तबाही अब रुक जानी चाहिए। इसराइल और हिजबुल्ला दोनों ही सीज फायर तोड़ने का दोष एक दूसरे पर डाल रहे हैं। वीकेंड पर ईरान ने कहा कि उसने इसराइल की हरकतों के जवाब में एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। अमेरिका ने इस बात से इनकार किया कि इस अहम समुद्री रास्ते को बंद किया गया है, लेकिन इस रास्ते का जिक्र भर ही काफी अहमियत रखता है और इसलिए जब जिनेवा में मीडिएटर्स शांति का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी भी समझौते के लिए लेबनान की अहमियत को देखते हुए इसराइल और हिजबुल्ला दोनों ही वीटो पावर रखते हैं। बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट।
0: स्विट्जरलैंड में हुई इस बातचीत में दो तस्वीरें काफी चर्चा में रहीं। पहली तो ये जिसमें ईरानी विदेश मंत्री पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिले और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस उन्हें दूर खड़े देखते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर में कतर के पीएम अमेरिकी उपराष्ट्रपति को एक तरह से बायपास करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से काफी गर्मजोशी से मिलते दिखाई दिए। इन दोनों तस्वीरों के क्या मायने हैं ये मैंने थोड़ी देर पहले पूछा तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उमेर अनस से।
4: देखिए ये जो मुलाकात है और इसका जो फोटो का आप वीडियो की जो बात कर रहे हैं ये इतना अहम है क्योंकि एक फोटो में तो आपको कतर के प्राइम मिनिस्टर दिख रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो जेडी वांस को नजरअंदाज कर रहे हैं और वहीं पर आखिरी में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं और उनके पीछे जेडी वांस खड़े हैं। वो कनखियों से ईरानी डेलीगेशन को देख रहे हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और उनको पता है कि जेडी वांस यहाँ पर हैं। तो ये जो इस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं ये एक बहुत ही टफ जो एक रिलेशन होता है उसको ये दर्शाती हैं कि कैसे एक बहुत ही मुश्किल जो डिप्लोमेसी होती है और उसमें जब विश्वास नहीं होता है फिर भी वो एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एक इतनी मर्तबा विश्वास टूटता है कि उनको लगता है कि अगर हमने जरा से भी अपनी तस्वीर उनके साथ आने दी तो हमारे यहाँ की जनता उसको ये मान लेगी कि हमने इनके साथ समझौता कर लिया। तो वो मैसेज है पिक्चर को लेकर के वो बड़ा शार्प है। और कतर के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि जैसे वो एक तस्वीर दिखी और ठीक उसका अपोजिट एक और पिक्चर आपने देखी होगी जो उन्होंने खुद अपने हैंडल से शेयर की है कि कैसे वो एक दूसरे के साथ काम करें और पीछे कुश्नर खड़े हुए हैं। तो उससे ये भी पता चलता है कि कितना कंफर्टेबल रिलेशन है और कितना इनफॉर्मल वे में वहां पर इन दोनों ने चर्चा की है। जिस तरह की तस्वीरें वहां से उभर के आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और डिप्लोमेसी में वो बड़ी दिनों तक याद रखी जाएंगी।
0: अब इस बातचीत पर आपका क्या टेक है? क्या कहा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका अब जंग खत्म करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं?
4: आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब एक मरतबा कहते हैं कि हम अगली सुबह तक ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को नष्ट कर देंगे, और ठीक उसके 12 घंटे के बाद उनका दूसरा बयान आता है कि हमारे

0: एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हो रही है बातचीत की। इससे पता चलता है कि दोनों के बीच में जो बातचीत है वो बड़ी गंभीर तरीके से की गई है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि JCPO से भी ज्यादा शायद ये सीरियस स्टेज की बातचीत है, क्योंकि ईरानियंस अपने बहुत सारे डिमांड्स को पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप उसको मनवाना चाहते हैं, उसके ऊपर अश्योरेंस लेना चाहते हैं, और जब वो अश्योरेंस मिल जाएगा तो उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन होने तक अपने आप को वो पूरी तरह से अपनी चीजें नहीं देंगे।
1: और बात ब्रिटेन की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी ऐतिहासिक चुनावी जीत के महज 2 साल बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अपने परिवार का जिक्र करते हुए वो भावुक नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि नए प्रधानमंत्री के चुने जाने तक वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पद पर बने रहेंगे। उनके भाषण के आखिर में वहां मौजूद स्टाफ तालियां बजा रहा था, वहीं स्टारमर ने भाषण खत्म करते ही अपने पत्नी को गले लगाया।
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
3: मैंने जो भी फैसला लिया उसका मकसद हमेशा उस देश को प्राथमिकता देना रहा जिससे मैं प्यार करता हूँ। इसी वजह से मैं लेबर पार्टी के लीडर के तौर पर इस्तीफा दे रहा हूँ। आज सुबह मैंने अपने इस फैसले की जानकारी हिज मैजेस्टी द किंग को दी। मैं लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति से कहूंगा कि वो चुनाव का टाइम टेबल तय करें। नामांकन 9 जुलाई से शुरू होगा और संसद के समर रिसेस से पहले पूरा हो जाएगा। अगर चुनावी मुकाबला होता है तो ऐसे सितंबर में संसद के दोबारा शुरू होने से पहले नया नेता चुना जा चुका होगा। ऐसा होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा और सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो इसकी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने उत्तराधिकारी को भी पूरा समर्थन दूंगा। मुझे भरोसा है कि उनके हाथ में उस ब्रिटेन की कमान आएगी जो 2 साल पहले मुझे मिले ब्रिटेन से कहीं ज्यादा मजबूत और निष्पक्ष है। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और लेबर पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाने में भी ज्यादा सक्षम है।
2: Better prepared for the challenges ahead and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
1: उनके मुख्य प्रतिद्वंदी एंडी बर्नम ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद आज सांसद के तौर पर शपथ ली। मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नम ने अब इस मुकाबले के लिए अपनी उम्मीदवारी की पुष्टि कर दी है। अगर उनके खिलाफ कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरता है तो जुलाई तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। उन्हें अब ब्रिटेन के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग का भी समर्थन मिल गया है। लेकिन कीर स्टारमर के इस्तीफे की क्या वजह रही है और एंडी बर्नम जो अगर वो पीएम बन जाते हैं तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, ये सवाल मैंने थोड़ी देर पहले पूछा लंदन में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा से।
4: महंगाई की वजह से जो लोगों को दिक्कतें हो रही थी वो दूर नहीं कर पाए, क्योंकि 2-2, 3-3 युद्ध शुरू हो गए और कई विवादों में भी फंसे, और उनमें सबसे बड़ा विवाद उन्होंने जो राजदूत नियुक्त किए थे अमेरिका में मेंडलसन साहब, वो बहुत पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको मालूम नहीं था कि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में मिलेगा। इसके अलावा बहुत से फैसले उन्होंने ऐसे लिए जो उनको वापस लेने पड़े, तो कुल मिलाकर के जो लोगों की आशाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से उनके खिलाफ चुनौतियां खड़ी हुई, फिर कैबिनेट में उनके जो कुछ वरिष्ठ मंत्री थे उन्होंने इस्तीफे दिए और उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि एंडी बर्नहम वो उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले 10 साल में मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर के महापौर के तौर पे, तो उनका समर्थन बढ़ता गया और फिर उनके लिए एक सीट खाली की गई वेकफील्ड में, जो कि उत्तर इंग्लैंड में पड़ता है यॉर्कशायर में, और वहां से वो अच्छे बहुमत से जीते। और बाकी जो यहाँ के लेबर पार्टी के 403 जो सांसद हैं वो लेबर पार्टी के हैं, तो उनमें से बहुत से सांसदों को ये लगने लगा कि अब कीर स्टारमर साहब की लोकप्रियता घट रही है तो इसलिए नया नेता चुना जाए और नए नेता के रूप में एंडी बर्नहम उभरे और वे लेबर पार्टी के नए नेता और नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके सामने चुनौतियां वही होंगी जो चुनौतियां सर कीर स्टारमर के सामने थी, और सबसे बड़ी चुनौती तो देखिए लेबर पार्टी की ये है, 2 गुट है उसमें, वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो वामपंथी समर्थन के पल पर वो चुनाव नहीं जीत सकती, और जब वो चुनाव जीतती है दक्षिणपंथी धड़े के समर्थन पर तो उसके बाद वामपंथी धड़ा उस पर हावी हो जाता है, वो अपनी नीतियां उस पर लादना चाहता है, तो यही चुनौती इनके सामने भी होगी। तो कैसे ये आकर के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, कैसे ये आगर के जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनमें खर्चा बढ़ाएंगे, रक्षा का खर्च बढ़ाएंगे, ये सब मांगे कैसे पूरी करेंगे।

0: ये तो यही जानते हैं, लेकिन ये चुनौतियां बल्कि इनके सामने और ज्यादा बड़ी होकर के इनके सामने आएंगी, तो राह जो है वो आसान नहीं है, बहुत कठिन है ये डगर इनके पनघट की।
1: और किसने सोचा होगा कि हैरी पॉटर की कहानियां किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। लेकिन एक यूक्रेनी सैनिक ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। रूस ने 2022 में उन्हें बंदी बना लिया था। रूस की कैद में रहते हुए उन्होंने हैरी पॉटर की जादुई कहानियां सुनाकर कैसे अपने साथी कैदियों में भविष्य को लेकर उम्मीद जगाई। देखिए बीबीसी की खास रिपोर्ट में।
2: यूक्रेनी सेना में शामिल होने के पहले से ही अलेक्जेंडर इवानोव को हैरी पॉटर की कहानियां बहुत पसंद थी।
3: मिस्टर और मिसेस डर्सली इस बात को फक्र से बताते थे कि वो बिल्कुल आम है। हैरी पॉटर की कहानी कुछ ऐसे ही शुरू होती है।
2: लेकिन रूस के हमले के कुछ वक्त बाद जब उन्हें बंदी बना लिया गया तो इन जादुई कहानियों के लिए उनका प्यार ही उनके और उनके साथी कैदियों का सहारा बन गया।
3: शुरू में भविष्य को लेकर सपने थे, 1.5 महीने बाद आप प्लान बनाने लगते हैं और 2-3 महीने बाद जिंदगी के अहम पल याद करने लगते हैं।
2: तब उन्हें एहसास हुआ कि यादें उम्मीद को जिंदा रख सकती हैं, लेकिन कई हफ्ते गुजरते गए।
3: फिर ऐसा वक्त आता है जब आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचता।
2: तब उस जादूगर ने उनकी मदद की।
3: मुझे ऑडियो बुक का ख्याल आया, यानी जब कोई कहानी सुनाता है, तो मैंने सोचा ही खुद ही क्यों ना ऑडियो बुक बन जाऊं। इससे मुझे भी खुशी मिलती थी क्योंकि इस जरिए मैं खुद भी उस बुक को दोबारा जी रहा था। फिर मैंने कहानी सुनाना शुरू कर दिया और फिर कहानी को दिलचस्प मोड़ पर रोक देता था, यूक्रेनी टीवी प्रोग्राम्स की तरह, जैसे वो कहते हैं कि बस 30 मिनट के एडवर्टीजमेंट के बाद जानिए कि आगे क्या हुआ।
2: लेकिन कैद के दौरान अक्सर बात करने की मनाही होती थी, इसलिए उन्हें धीरे धीरे फुसफुसा कर कहानी सुनानी पड़ती थी ताकि पहरेदार न सुन सके।
3: कभी कभी हम सोने जाते और कोई दोस्त मुझसे कहता कि सान्या पता है मैं क्या इंतजार कर रहा हूँ, सुबह होने का, नाश्ता करने का और तुमसे आगे की कहानी सुनने का कि आगे हुआ क्या।
2: इन किताबों से प्रेरित उनके टैटू भी उनके काम आए।
3: यहाँ मेरे पास एल्डर वॉन का एक डिजाइन है। वो पूछते थे ये टैटू किस चीज का है, मैं कहता सर ये हैरी पॉटर से है। स्वास्तिका से लेकर फुटबॉल क्लब के साइन, शेर, बाघ, पांडा या दूसरे जानवर तक के टैटू वो देखते थे, लेकिन यहाँ तो हैरी पॉटर की कहानी की एक तस्वीर थी, ये देखकर वो बिल्कुल चौंक जाते।
2: उनकी पत्नी नेली और छोटे बेटे डेमिड ने उनकी रिहाई के लिए 1495 दिन इंतजार किया।
3: मैं कैद में 4 साल 1 महीना और 3 दिन रहा।
4: मुझे पता है कि उन्हें ये नॉवेल्स बहुत पसंद है। मैं सोचती थी कि अगर वो वहाँ हैरी पॉटर की कहानी सुना रहे हैं तो हालात उतने बुरे नहीं होंगे। इसका मतलब है कि उनका हौसला अभी भी कायम है और ये किसी न किसी तरह उनकी मदद कर रहा है।
2: आखिरकार पिछले महीने यानी मई में उन्हें रिहा कर दिया गया और अब वो रिहैबिलिटेशन में हैं। उन्हें हैरी पॉटर से जुड़ी यादगार चीजों के साथ सैकड़ों संदेश और पार्सल मिल रहे हैं और अब उनकी अपनी कहानी भी हजारों लोगों के लिए मिसाल बन रही है।
1: अब देखिए दुनिया की कुछ बड़ी खबरें बीबीसी।
5: जी सोहेल सिंह जी, कुछ एक खबर ते गल्ला बता जेड़ी तुसी सुनिया, क्योंकि हले आपां अपनियां भी गल्ला बता करनी है, ते चरण जी ते मैं आपां भी कुछ प्लान करके बैठे हैं, थोड़ियां गल्ला बता करांगे। बट खबरां जेड़ियां दुनिया दियां इन्नियां इंटरेस्टिंग हुंदियां, जिहदे चाहे ईरान ते अमेरिका दे रिलेशनशिप, जिहदे च पाकिस्तान काफी वधिया रोल प्ले कर रिहा, उहदे नाल नाल हैरी पॉटर दी तुसी सुनिया जी, इह हैरी पॉटर ने भी किस तरह लोकां नूं जिहड़ा जिंदगी बचा रिहा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਟੈਮਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ, ਹਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ।
6: ਫੀਮੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7: ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਵੈਲ ਕੇਅਰਡ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।
6: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
7: ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਅਕਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ।
6: ਕਾਲ ਕਰੋ 5873306890 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ, ਵਾਕ ਇਨ ਸਵੇਰੇ 9

0: ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
1: सोने घर की निशानी होती है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी का पता पूछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकते हो अपनी पसंद की फ्लोरिंग का समान। फ्लोरिंग घर का होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन का प्लान, कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग के डिजाइना नाल भरिया है इन्हों का शोरूम। अज ही इन्हों के शोरूम ते पुछो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़। आप सबका अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कैलगरी में थोड़ा सा मौसम फिर चेंज होता हुआ, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश। तो प्लीज अपना ध्यान रखें और स्पेशली ड्राइविंग करते हुए अगर बारिश हो या इस तरह की कोई कंडीशंस हो जहां पे आपको एक्स्ट्रा कॉशन की जरूरत है, तो प्लीज गाड़ी जरा संभाल कर चलाएं। कैलगरी में अगर हम मौसम की बात करें तो अगले 7 दिन बहुत अच्छा मौसम दिख रहा है, जो कि वेदर चैनल के ऊपर है। तो 18, 19, 20 के करीब मौसम रहेगा और कभी कभी बारिश होने की संभावना है, तो प्लीज अपना आप ध्यान रखें। हमारे कैलगरी में जैसे ही समर शुरू होते हैं, आपको पता है बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं और ऐसा ही एक प्रोग्राम होने जा रहा है बहुत जल्दी, जिसका नाम है राग दरबार, जो कि प्रस्तुत होगा सर्ब अकाल म्यूजिक एकेडमी की तरफ से। तो उनके जो नुमाइंदे हैं भाई हरीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे फोन पे, तो उनसे हम बातचीत करेंगे और उसके बाद और जानकारी जो और इवेंट होने वाले हैं कैलगरी के अंदर उसके बारे में आज इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले गाना सुनते हैं और फिर गाने के बाद हम लोग जुड़ेंगे भाई हरजीत सिंह जी से। आई होप यू विल लाइक दिस सॉन्ग। मिलते हैं इस गाने के बाद।

0: इत्मीनान नाल किसी प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
1: वधिया घर खरीदना पैसे बचाने ने सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
0: सिर्फ घर खरीदने ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
1: घर खरीदन ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
0: भरोसेयोग रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
1: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचण दी प्लानिंग मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
0: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
1: चाड़न लई थब्बा नोटां दा लगदा है। होर ता होर ट्रकां दी इंश्योरेंस बंदे दा धुआं कढ दिंदी है ते दुहाइयां फिर बंदा पौंदा है।
2: सुनो सुनो सुनो ट्रकिंग कंपनियां दे मालक ते ट्रक ओनर जरा ध्यान नाल सुनो। ट्रकां दी सस्ती इंश्योरेंस दा हल हुण आ गया। ट्रकां वास्ते इंश्योरेंस दे रेट लैण लई सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा नाल 587-832-1208 ते संपर्क करो। तजर्बेकार इंश्योरेंस ब्रोकर मानस पहुजा ते उहनां दी टीम प्रोफेशनल सेवावां दिंदे हन। बेस्ट ट्रक इंश्योरेंस रेट्स लई याद रखो सोनिक इंश्योरेंस 587-832-1208।
3: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे एक और प्रोग्राम के बारे में बातचीत करने के लिए वहां के नुमाइंदे। तो जब तक वो हमारे साथ शिरकत करते हैं आइए एक और गाना सुनते हैं। अगेन सुखविंदर जी की आवाज और सलीम सुलेमान जी ने उनका साथ दिया है। मिलते हैं इस गाने के बाद। आई एम वेरी श्योर यू गोना एंजॉय दिस सॉन्ग।

0: सो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में. आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर. जैसा कि मैंने आपसे भी बोला था कि हमारे साथ आज जुड़ेंगे नुमाइंदे जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देंगे एक और बहुत ही अमेजिंग इवेंट की जो होने जा रहा है. चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है. ये जो भजन है, माता की जो भेंट है, हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं. लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं हमारे कैलगरी में जिनके ऊपर माता की असीम कृपा है और उनके जरिए ही हम लोग उस माता के साथ जुड़ पाते हैं. और हर साल निरंतर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ये जो माता की जागरण की रात है वो हमारे कैलगरी में करवाई जाती है. चाहे कोई भी आपदा हो या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही हो, वो अपने आप दूर हो जाती है जब हम माता का नाम लेते हैं. और उस जागरण की रात को जो लोग करवाते हैं उन पे भी माता की कृपा रहती है. रिकिन रूला जी, अंबे सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से ये जागरण की रात आपके लिए लेके आए हैं. फ्राइडे जून 26 राजवीर बैंक्वेट हॉल में आज हमारे साथ वो जुड़े हैं और साथ में मोनिका जी हैं. हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस अमेजिंग इवेंट के बारे में. रिक्की जी, मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में.
1: थैंक यू.
2: थैंक यू वेरी मच. सभी श्रोता को हमारा प्यार भरा नमस्कार.
0: सत श्री अकाल सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप

0: टाइम निकाल के, और जो भी भगत जन हमारी या जनता सुन रही है आपको, वो जरूर इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएंगे, क्योंकि फेसबुक या सोशल मीडिया अपनी जगह है, लेकिन एक मैसेज जो आपकी तरफ से जाता है हमारे रेडियो के माध्यम से, वो भी अलग एक रोल प्ले करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए।
1: आपका और सुषम की सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जागरण की रात की, वो लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे।
0: क्या बात है। मोनिका जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। मोनिका जी, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें हम देवी देवताओं दोनों को पूजते हैं, और कहते हैं ना कि अगर हमें पैसे की प्रार्थना करनी है तो लक्ष्मी माँ है, अगर हमें गाना सीखना है या हमें लर्निंग करनी है किसी चीज की तो माता सरस्वती हैं, और अगर हमें हिम्मत चाहिए तो काली माता है, माता दुर्गा है, उनका नाम लेके हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, राइट। तो हिंदू संस्कृति में और हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में देवी देवताओं का बहुत बड़ी महत्ता है। आप कब से जुड़ी हैं वैष्णो देवी माता के नाम के साथ?
2: मैं वैसे तो चाइल्डहुड से ही कह सकते हो
0: कि
2: बचपन से जुड़ी हूँ
0: जी,
2: कि वैष्णो देवी जाते थे
0: जी।
2: लेकिन चिंतपूर्णी जैसे हर साल हमारी फैमिली चिंतपूर्णी जाती है
0: जी।
2: जब मेरी शादी हुई उसके बाद इन-लॉज फैमिली में भी सारे चिंतपूर्णी माता तो कोई मानते हैं
0: जी।
2: जैसे कह लो कि कुल देवी कई लोग कह देते हैं, तो चिंतपूर्णी माता ही है। जब भी हम लोग इंडिया जाते हैं तो हम लोग चिंतपूर्णी जरूर जाके आते हैं। मेरे बच्चों के दोनों के मुंडन भी चिंतपूर्णी माता पे ही हुई है।
0: क्या बात है। और आपने तो देखा है कि वहां पर कोई ये नहीं है कि किस समुदाय से हैं, सिख हैं या अपने हिंदू हैं या कोई भी हैं, हम लोग सारे ही जाकर वहां पर माता देखते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये जो जागरण की रात होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या आपका मानना है कि अटेंड करना क्यों जरूरी है, जो लोग नहीं जानते माता के बारे में उनके लिए स्पेशली?
2: हाँ जी, मेन तो मैं यही कहूंगी कि अटेंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहते हैं कि आज तक जो कुछ मिला है, कि चाहे वो किसी भी आप धर्म किसी भी चीज को मानते हो उसकी वजह से, राइट। अगर हम लोग कहते हैं कि जागरण करवा रहे हैं, माता रानी आ रहे हैं
0: जी,
2: तो हर तरह की आशीर्वाद ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए आपको आना चाहिए। कोई भी प्रार्थना हो वहां से कोई खाली नहीं जाता। कहते हैं ना कि आप झोली भर के ही लेके जाते हो, कोई ना कोई आपकी मुराद होती है। नहीं भी मुराद है तो धन्यवाद करने के लिए माता रानी का है जो आज तक आपको मिला है, और आज इसके बाद जो आप पाना चाहते हो उसकी आप प्रार्थना करने के लिए आ सकते हो, ताकि आपको वो फ्यूचर में सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।
0: क्या बात है। रेखी पाजी, आप निरंतर, मैं आपको देख रहा हूं, आप इस सेवा में लगे रहते हो और माता ने आपको चुना है, मैं तो ये मानता हूं। ये आप मानो ना मानो, लेकिन ये सबके मन में होता है, हमारे मन में होता है कि हम भी करवाएं जागरण, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती या टाइम नहीं लग पाता या फिर इतने हमारे एसेट्स नहीं हो पाते कि हम लोग करा पाए, लेकिन आप निरंतर जो माता के आशीर्वाद को लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हो, जो कहते हैं ना चलो बुलावा आया है, तो आप वो बुलावा जो है आपकी तरह चिट्ठी जो होती है आपके थ्रू आती है और आप लोगों को सेलिब्रेट यहां पर आप करवाते हो, वो माता का दर्शन आप करवाते हो, तो आपकी इस जो इसका स्रोत क्या है?
1: बस माता रानी की कृपा है कि माता रानी ने हमें ये सेवा का मौका दिया कि हम लोग एक रास्ता बन सके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इंडिया से हम लोग आ चुके हैं ना, तो बहुत से लोग हैं मिसिंग करते हैं ऐसी चीजें, उनके पास टाइम नहीं होता या ऑर्गेनाइज करने का अरेंजमेंट जैसे
0: नहीं
1: होगा कि नहीं होगा नहीं कर सकते
0: जी, जी।
1: तो माता रानी ने हमें ये सेवा का मौका दिया है, हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन फिर भी भक्तजनों के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और स्पेशली जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं हमें सपोर्ट करते हैं, सारे बिजनेस भी उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने भी स्पॉन्सर्स भी और जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं इस जागरण के द्वारा, तो वही हम जागरण कर पाते हैं बेसिकली।
0: बहुत हिम्मत की बात है रिकी पाजी, क्योंकि ये एक ऐसा दिवस ही कह सकता हूं जिसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। हम यही कहते हैं कि बाकी ऊपर वाले का हाथ में है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी गलती ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि हमारे इस प्रोग्राम में रुकावट हो। लेकिन इतने सालों से माता रानी का आशीर्वाद है और आगे भी जो माता रानी है आपको ऐसे ही ऊपर चढ़ाती रहेगी। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि यहां

0: पर कौन इस बार भेंटे लेके आ रहा है?
1: हाँ जी, जो हमारा ये चौथा वार्षिक जागरण है अंग्रेज सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से
0: जी,
1: जून 26 को फ्राइडे, जो कमिंग फ्राइडे आ रहा है
0: जी,
1: उस दिन है। इंडिया से विपिन सिंहदेवा जी और
0: अच्छा।
1: संचारी बोस जी माता का गुणगान करने के लिए आ रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो विपिन जी का तो बहुत नाम है और बहुत सालों से वो बॉलीवुड में भी गाते रहे हैं और जागरण में भी उनका बहुत बड़ा नाम है, तो कोई खास वजह उनको बुलाने की इस बार?
1: हाँ जी, क्योंकि 2023 में वो आए थे।
0: अच्छा।
1: तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और बहुत लोगों की डिमांड थी कि विपिन जी को वापस लाया जाए।
0: अच्छा।
1: तो फिर इसीलिए वही सेम ही टीम 2023 वाली, विपिन सिंहदेवा और संचारी बोस, ये 2023 में आए थे
0: जी जी,
1: तो अभी इसीलिए सेम टीम वापस आ रही है लोगों की डिमांड के कारण।
0: क्या बात है। अगर माता का जागरण हो रहा है तो वहाँ भंडारा भी होगा, पूजा भी होगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में विवरण बताएं प्लीज।
1: फ्राइडे शाम को 6 बजे पूजा शुरू हो जाएगी
0: जी,
1: और 7 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा, साथ ही 7 बजे जागरण शुरू हो जाएगा। पंडित जी आ रहे हैं बाहर से, वो माता रानी का वाहन करेंगे, उसके बाद लोकल सिंगर्स होंगे, फिर विपिन सिंहदेवा जी और संचारी बोस जी गाएंगे। जैसे हमने लास्ट ईयर भी हमने स्कॉलरशिप दी थी, क्योंकि हमारा जो अंबे सोसाइटी ऑफ कैलगरी का एक मोटिव है कि हमने कम्युनिटी को ही वापस देना है।
0: जी बिल्कुल।
1: जो कम्युनिटी हमें सपोर्ट करती है हम कम्युनिटी को वापस देते हैं।
0: जी जी।
1: ब्राउन बैगिंग सोसाइटी है जो एवरी सिंगल डे मंडे टू थर्सडे 8500 बच्चों को स्कूलों में लंच प्रोवाइड करती है।
0: क्या बात।
1: हाँ जी, और ऐसी बहुत सी सोसाइटी है जिनको हेल्प चाहिए
0: जी,
1: सो हम जो भी हमारी तरफ से बच जाता है वो हम ब्राउन बैगिंग सोसाइटी को देते हैं। लास्ट ईयर हमने 4 स्कॉलरशिप दी थी, तो हमने वहीं पे अनाउंस किया था यूनिवर्सिटी के बच्चों का। इस बार हम 6 स्कॉलरशिप दे रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो जो भी बच जाता है थोड़ा सा, जितना भी बचे और नहीं बचता तो अपनी पॉकेट से डाल के हम ये ऐसा कोशिश करते हैं कि आगे आगे काम चलता रहे। जैसे अभी इस बार 6 बच्चे चूज किए हैं पैनल ने, जो हमारा पैनल बना हुआ है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारा एक पैनल बना हुआ है, बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं अंबे सोसाइटी कैलगरी .com/scholarship पे जाके। अभी तो एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है
0: जी,
1: उन्होंने बच्चे सिलेक्ट कर लिए हैं, तो वो बच्चों को 6 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप वहीं पे, जब मेन सिंगर आएंगे उनसे पहले 9 to 9:30 वहीं पे स्कॉलरशिप दे देंगे।
0: क्या बात है। तो माता के आह्वान के साथ साथ जो है हम ऐसा नेक काम भी कर रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। ये सब ऊपर वाले का कर्म है, आपके ऊपर और आपके परिवार पे, आपकी टीम के ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो आपको हर साल ये करने के लिए आगे लेके आती है।
1: बिल्कुल सही जी, क्योंकि टीम, वॉलंटियर्स और जितने भी हमारे सपोर्टर हैं, डिवोटीज जो हमें सपोर्ट करते हैं जागरण के लिए, उनके बिना ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो भाग सकता हूँ, लेकिन जब तक मेरे पीछे सपोर्ट नहीं होगी मैं भाग नहीं सकता, है ना, मैं आगे लग नहीं सकता। सो वो मेरे को बूस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग, ये सारी हमारी अंबे सोसाइटी की जो टीम है वो इसीलिए हम लोग आगे काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बात करते हैं थोड़ा सा, मोनिका जी आप बताएं, जो हमारी माएं बहनें प्रोग्राम में आती हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है बच्चे संभालने की, ये कहाँ करेंगे बच्चे रात भर, तो क्या वहां पर जगह होगी बच्चे बैठने के लिए? मतलब कि अगर जो हमारी बहनें आ रही हैं, माताएं आ रही हैं, छोटे बच्चे हों तो वो उनको भी आराम से वो सुला सकती हैं वहां पर, अगर वो सोना चाहे तो?
2: हाँ जी, क्योंकि राजवीर बैंक्वेट हॉल में हो रहा है तो सबको पता है कि कैपेसिटी राजवीर बैंक्वेट हॉल की वैसे ही बहुत ज्यादा है,
0: इसलिए मैंने पूछा आपसे,
2: क्योंकि जब हम चेयर्स लगाते हैं फिर भी कैपेसिटी ज्यादा है, तो वहां पे तो नेचुरली सब हम लोग फ्लोर पे बैठते हैं। चेयर्स लगी होंगी बट सीनियर्स के लिए, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए चेयर्स लगी होंगी, बट नीचे हॉल की कैपेसिटी की वजह से हॉल इतना बड़ा है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, शोर कर रहे हैं, आप थोड़ा पीछे भी बैठ सकते हो, लेकिन इतनी इनफ जगह है कि आप छोटे बच्चों के साथ हो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर, जितने ज्यादा लोग आप अपने साथ लेके आ सकते हो उतने आ सकते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, जागरण की रात फ्राइडे जून 26 राजवीर बैंक्वेट हॉल में होने जा रही है। एड्रेस है 3961 52nd Avenue North East। पूजा का समय शाम को 6 बजे, भंडारा सात बजे शुरू होगा और जागरण उसके बाद पूरी रात चलेगा। रिकी जी, जब हम जागरण की बात करते हैं, पूरा रात ये प्रोग्राम चलता है, तो सुबह कितने बजे तक प्रोग्राम होता है और उसका क्या कार्यक्रम होता है, मतलब कि जब एंडिंग की तरफ हम जा रहे होते हैं?
1: जागरण शुरू होता है रात को, जब हम फिनिश होता है 1:30 बिटवीन 2, डिपेंडिंग ऑन पब्लिक की डिमांड पे
0: जी।
1: सो वन उस

0: उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक होती है, फिर माता तारानी की कथा होती है
1: जी।
0: कोई भी जागरण माता तारानी की कथा के बिना
1: संपूर्ण नहीं होता, बिल्कुल।
0: सो 2 o'clock से लेके 3:30 तक माता तारानी की कथा होती है, उसके बाद आरती होती है, सो 4 o'clock समापन हो जाता है।
1: समापन हो जाता है, तो भंडारा जो है वो शाम को 7 बजे शुरू होगा।
0: भंडारा शुरू होगा 7 बजे, लेकिन सारी रात चलेगा।
1: अच्छा।
0: आपने जब भी खाना खाना है, आपको रात में भूख लगती है, दोबारा भी आप खा के जा सकते हो। और सुबह क्योंकि जब हमारी ब्रेक होती है तब चाय भी होगी, गर्म गर्म चाय मिलेगी। चाय सारी रात चलेगी वैसे तो, तब गर्म गर्म चाय भी मिलेगी, क्योंकि ब्रेक के बाद फिर आदमी फ्रेश अप हो जाता है चाय।
1: सो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि कितना मेहनत का काम है, कितना हिम्मत का काम है जो रिक्की जी और उनकी टीम कर रही है। बहुत उनको बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए कि वो इतना मेहनत से ये सब काम कर पाते हैं और आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आते हैं ताकि आप भी माता के साथ जुड़ चुकें। अगेन, जैसे मोनिका जी ने कहा, हम लोग यहाँ पर अपने देश से दूर हैं, कई बार हम लोग नहीं माथा टेकने जा पाते, जो हमारी इच्छा होती है कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं भी वैष्णो देवी के दर्शन करूं या मैं भी चिंतपूर्णी जी के दर्शन करूं। वो दर्शन जो है वो आपको यहीं कैलगरी में हो सकते हैं। आप जरूर पहुंचें 26 जून को शाम को 6 बजे पूजा शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले पहुंचें और इस अमेजिंग अमेजिंग इवेंट का हिस्सा बनें। बहुत ही ऑस्पेशियस दिन है और माता रानी का आशीर्वाद वहां जरूर लें। रिक्की जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहां आए और आपने रेडियो सुरसंगम को मैं मौका दिया कि हम आपकी बात लोगों तक पहुंचा सकें। क्या कहना चाहेंगे आप अपने संदेश में?
0: हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हॉल के फ्रंट पे हमने स्पेशली अरेंज किया है सीनियर्स के लिए हैंडीकैप पार्किंग है, वो हॉल के बिल्कुल फ्रंट पे है
1: जी।
0: सो हैंडीकैप पार्किंग बिल्कुल हॉल के फ्रंट में है। सो जब आएंगे वहां पे सिक्योरिटी वाला होगा, तो आपका हैंडीकैप टैग लगा होगा, तो वो आपको पार्किंग की इंस्ट्रक्शन देगा। और माथा टेकने के लिए भी जितने भी सीनियर्स हैं और प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो उनको सीधा माथा टेकने लगाया लेके जाया जाएगा। सारे वॉलंटियर्स को पता है, आप किसी भी वॉलंटियर्स को आवाज देंगे, वो आपको सीधा माथा टेकने लेके जाएगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा
1: जी, जी।
0: तो ये सीनियर्स और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के लिए है, वो सीधा माथा टेक सकते हैं। तो सीनियर्स के लिए हमने ये इंतजाम किया है और हैंडीकैप पार्किंग राइट फ्रंट ऑफ द गेट है।
1: क्या बात है। मोनिका जी, आपका संदेश क्या है?
2: मैं तो बस यही कहूंगी, अंबे सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से सभी सपोर्टर्स, सभी वॉलंटियर और सबका धन्यवाद, क्योंकि ये इवेंट सबकी सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो मीडिया है, चाहे आज हम यहाँ रेडियो पे आए हैं, क्योंकि जो आप लोगों को सुनेंगे, हमें भी सुनेंगे, आज सुनेंगे, उनमें से बहुत से लोग हैं जो वहां पे पहुंचेंगे, राइट। इसलिए तहे दिल से अंबे सोसाइटी की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: क्या बात है। सो दोस्तों, जो टीम है विपिन जी की और संचारी बोस जी की, दोबारा आपके लिए जागरण के जो भजन है वो लेके आ रही है। आप वहां पर पहुंचें और इस अमेजिंग इवेंट का हिस्सा बने, माता रानी का आशीर्वाद लें। और अगेन रिक्की जी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, जाइए कहीं नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
3: फीमेल डॉक्टर हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी, इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ, इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम, फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक, सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले हां ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696, 587-617-4496। ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
4: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका, फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते।

हाउस इना ही नहीं इना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाई जा सकती ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकते हो इमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकते हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।

है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि फीस किस तरह ली जाएगी तो किन्नी ली जाएगी। खैर ये चीज़ां तो आने वाले दिनों क्लीयर होंदिया रहणगियां। उधर पाकिस्तान के नाल थोड़ी जी जिहड़ी जो चर्चा चल रही है उहदे ते भी गल करदे हां, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के चलते इस दे सलातां दे चलदे हां ते मिडल ईस्ट की अनसर्टनिटी के चलदे हां विश्व की मार्केट की कह रही है जरा ये ते पहलां हुण झाती मार लईए जी। तेल दीआं कीमतां फिर डिगियां ने जी, कच्चे तेल जो WTI क्रूड ऑयल है $73 प्रति बैरल ते इस वेले ट्रेड हो रहा है, तकरीबन जिहड़ा ब्रेंट क्रूड है $76 ते ट्रेड हो रहा है। सो ये कीमत कल नालों भी थोड़ी जी हेठा वल ने। जे इस तो बाद जे असी करंसी की गल करिए एक अमरीकन डालर है वो $1.42 कनेडियन के बराबर वो जड़े ने जी अज मिल रहे हैं, तो जे इस तो उल्ट देखा जाए तो एक कनेडियन के तहत 70 सेंट अमरीकन मिलेंगे जो कि काफ़ी लो प्राइस है कनेडा की अमरीकन के मुकाबले। सो कनेडा खुद भी डाउन है, लेकिन जे असी देखिए कि इंडियन रुपए के मुकाबले की है तो एक अमरीकन दे तुहानूं अज मिल सकते हैं ₹95.10। सो अमरीकन इंप्रूव होया, लेकिन कनेडियन कित्थे है ये बारे भी झात मार लेंदे हैं। कनेडियन की गिरावट लगातार जिहड़ी है वह जारी है, तो पिछले दिनों ज़्यादा नहीं तो पिछले 1.5 महीने के तकरीबन 4 रुपए घट मिलन लगे ने एक कनेडियन डॉलर के, अज 66.67 रुपए के आसपास जिहड़ा है जी ये ट्रेड हो रहा है। गलबात नूं अगे तोर के असीं जरा कि इहदे ते चर्चा करदे हां जी कि स्थिति जिहड़ी उत्पन्न हुई है इस विच जो पाकिस्तान की जिहड़ी मैं चर्चा कीती है ते उत्थे दे कुछ इस तरह की भी गलबात चल रही है कि दुनिया विच पीस लिआउण लई शांति लिआउण लई जो कोशिशां उन्हां ने कीतियां ने चंगियां कीतियां ने, लेकिन अपने लोकां दे बारे भी सोचना चाहिए है पाकिस्तान दे अगवन। और इस बारे चर्चा जिहड़ी छिड़ी है उहदे विच इह कहा जा रहा है कि सिफत तां इहनां दी कीती गई है, लेकिन जिन्ना भी होया सुलह हुई है फुरती बहुत दिखाई है ते दूर दूर तक चाइना तक वाशिंगटन तक ईरान वालों भी सिफतां कीतियां गई ने पाकिस्तान दीआं। लेकिन पाकिस्तान दे बारे इह है कि इंडिया दे विच कोई जिहड़ा इसका बड़ा नैगेटिव रिस्पोंस है, भारतीय मीडिया खास तौर पर जो गोदी मीडिया का ग्रुप है वह लगातार इस चीज़ को डिफेंड करते जिहड़े सी वह नज़र आए कि पाकिस्तान कोई खास काम नहीं कर रहा। तो इस मामले दे विच जो कोई उन्होंने वालों की जा रही विचोलगिरी ये धक्के नाल ही की जा रही है, उन्होंने कोई इहो जिहा उन्होंने हाथ में कुछ नहीं है। ये भी कहा गया कि ट्रबल गेम खेडी जा रही है पाकिस्तान वालों, उत्थे कुछ होर दिखाते हैं तो उनका असल दे विच को कुछ होर है। खैर ये गेम तो चलदियां रहिंदियां ने जी पोलिटिक्स दे विच, लेकिन एक आप जी नूं खबर दस दी कि जो FIH प्रो लीग है जो हॉकी की एक लीग चलती है जिस विच भारत ते पाकिस्तान दा अज मैच सी FIH प्रो लीग दे विच, और बेलजियम ते नैदरलैंड दे विच लीग इस वेले खेडी जा रही है, और इस विच होए मैच दे विच अज इंडिया ने पाकिस्तान नूं 4-3 दे फर्क नाल हरा दिता, 4-3 दे फर्क नाल इंडिया वाले ने पाकिस्तान की हॉकी टीम नूं हराया जी। जरा होर खबरां वल चलदे हां जी। डोनल्ड ट्रंप 36 मुल्कां दे विच एक सर्वेखण होया जिस विच उन्हां दे बारे सवाल पूछा गया कि उन्हां दी इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग किहो जिही है ते लोग किन्ना क ट्रस्ट करदे ने। 36 मुल्कां दे विच प्यू रिसर्च सेंटर वल्लों ये जो सर्वेखण किया गया लोगों नूं पूछा गया तो उस विच गल सामने आई है कि इन्हां मुल्कां विच बहुते लोग ट्रंप दे हुण फैन नहीं, तो बहुत सारे मुल्कां नूं उन्होंने बड़ी कसूती स्थिति दे विच पसा दिता है, खास तौर पर टैरिफ के मुद्दे दे विच ते इधर मिडल ईस्ट की जंग के नाल जो तेल दियां एनर्जी दियां प्राइसिस वधियां ने ते जिहड़ी है जिहड़े कुछ अलाइड कंट्रीज़ हैगे ने उन्हां नाल भी इस तरह का विहार किया जिहड़े कि साथी मुल्क सी कि वह भी हुण नाराज़ ने। ट्रंप जिहड़े ने